राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: 10:50 on Sunrise with me, Shabnam Sahi. And Mr. Khan arz karte hain. अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। वाह, ब्यूटीफुल। तुमसे बेहतर ऑन सनराइज।
2: तुम्हारा मेरा मिलना लिखा तो होगा कहीं, नसीबों का सितारा मिला तो होगा कहीं।

0: करता रहता है।
1: दबंग थ्री का ये गाना सलमान अली मुस्कान की आवाज में आवारा, इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज वेंसडे की सुबह शबनम शाही के साथ। आज तो हम गा के रहेंगे, आज तो हैरी केन भी हमें नहीं रोक सकते। आप भी गा रहे हैं क्या बताइए ना। 0795 700 272 is the number for that, of course.

0: जल्दी कहे।
1: Celebrating 36 years of excellence. Sunrise Radio. This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 or visit asianfuneralcare.com.
3: Treat your customers and your team to the rich, authentic taste of Royal Chai, their favorite chai anytime. Get Royal Chai vending machines free. Yes, absolutely free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations and community spaces. Email info@royalchaivending.com. Royal Chai, brewed for business. T's and C's apply.
4: Kabhi alvida na kehna.
5: Pepe Spiri Piri presents the icon and living legend Sonu Nigam live in concert. The Revolution Tour comes to London on the 23rd of August at the Oval Arena, Wembley. The show is now 75% sold, last few tickets remaining. So get your tickets now to see Sonu Nigam for one show only in the UK. Tickets available from AXS and Ticketmaster. Powered by RGB in association with Berico Food Distribution Limited and Dairy Valley. Come see Sonu Nigam Live, brought to you by Rock On Music. It's a TCO production. Catering partner Madhus, hospitality partner The Taj Group, TV partner Colors TV, radio partner Sunrise Radio.
6: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूजडे टू संडे।